इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री सम्बन्धान् प्रशंसयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मन्दिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित

0: रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण

0: नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
5: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
6: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717117 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद सर फिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे, ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी, एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident, FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged, and in football India qualify for AFC.

0: suspended. Enforcement Directorate conducts searches at seven premises linked to TMC MP Nareemul Haque's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल के साथ द्विपक्षीय बैठक की कहा जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की बिहार मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे निखिल उपाध्याय आकाशवाणी समाचार पणजी
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे इससे वडोदरा छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात के दौरान कही विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में
4: रेटिफिकेशन लाइकली इन द कमिंग फ्यूचर
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावना

0: सुविधाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बैटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मन मर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के MCD उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि NDRF बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
4: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली ब्लीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट है सीमेंट और कॉन्क्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इंफ्लेक्सिबल बैग वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें केनाइन है या लाइट डिटेक्टर इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि ये मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
5: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यावहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता

0: और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट एआईआर न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट एआईआर न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
3: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सबा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 टूरंट कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सवालिंका और कार्लोस अल्काराज अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सवालिंका ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123104812371717 और 2331444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में अरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का जी अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुरु जी, अब आप कुछ जाने पहचाने लोकोक्तियों का पूर्वार्ध कहिए, हम उत्तरार्ध याद करने का प्रयत्न करेंगे।
1: क्यों नहीं, खेलते खेलते हम कुछ और सीखेंगे। आप भला तो
2: जग भला, आप भला तो हो जग भला,
1: आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। चिराग तले
0: अंधेरा, चिराग तले अंधेरा।
1: चार दिन की चांदनी
2: फिर अंधेरी रात, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
1: इसका अर्थ कम समय में अधिक सुख, सहज पके तो
0: सहज पके सो मीठा होए,
1: सहज पके सो मीठा होए। इसका अर्थ सोच समझ कर किए गए कार्यों का परिणाम अच्छा ही होता है।
0: गुरु जी, मुझे कुछ संदेह है कि हम इन लोकोक्तियों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं।
1: कौन सा बताओ?
0: जैसे अंधे की लकड़ी, आंखें चुराना, अंग अंग मुस्कुराना, 19-20 का अंतर, नाक पर गुस्सा।
2: अरे, ये वैसा नहीं है जैसा हमने अब तक सीखा है गुरुजी, ये स्वतंत्र वाक नहीं है।
1: हाँ, शरण्या ठीक कहती है, इसे हिंदी भाषा में मुहावरे कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है, मुहावरा वाक्यांश होते हैं। इसके प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली हो जाते हैं, वाक्य रोचक और चमत्कारी हो जाते हैं। मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, ये किसी वाक्य के भीतर होते हैं। यदि मुहावरा वाक्य से निकाला दिया जाए तो उसकी बहुत कुछ शोभा जाती है। मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है। जैसे अंग अंग मुस्कुराना, पुत्री की प्रशंसा सुनकर माता पिता अंग अंग मुस्कुराए, इसका अर्थ प्रसन्न होना। अंधे की लकड़ी, तुम इस मुहावरे का प्रयोग करो।
2: हाँ गुरुजी, मोहन माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान है।
1: अच्छा यशस, तुम कुछ प्रयोग करना चाहते हो?
0: हाँ गुरुजी, मैं प्रयोग करूंगा।
1: आंखें चुराना, इसका अर्थ बच कर रहना।
0: बच्चे अध्यापक को देखते ही आंखें चुरा कर निकल जाते हैं।
1: दोनों बहनों में 19-20 का अंतर है। इस वाक्य में 19-20 का अंतर का अर्थ क्या होगा शरण्या?
2: हाँ गुरुजी, अंतर बहुत कम, यानी बहुत कम अंतर।
0: इन मुहावरों को मैं पढूं गुरुजी?
1: हाँ हाँ जरूर पढ़ो।
0: गर्दन झुकाना यानी लज्जित होना, 420 करना धोखा देना, गले का हार बहुत प्रिय, नाक कटना अपमानित करना, पीठ दिखाना हार कर पीछे हटना।
1: हाँ, पीठ दिखाना हार कर पीछे हटना। हिंदी भाषा में लगभग 1000 मुहावरे हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। मुहावरा एक अरबी भाषा के शब्द है, इन्हें अंग्रेजी में इडियम कहते हैं, संस्कृत भाषा में वाग्धारा कहते हैं। इन मुहावरों को पढ़ो।
2: आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना,
0: आंखें खुलना मतलब समझना,
2: कान खोल कर सुनना मतलब सावधान रहना,
0: नाक पर गुस्सा तुरंत क्रोधित होना,
2: मुंह छुपाना लज्जित होना,
0: चकित होना,
2: सिर फिर जाना पागल होना,
0: सिर पर भूत सवार होना धूम सवार होना,
2: बातों बनाना बहाना करना,
1: बातें बनाना बहाना करना। इदे रीति कन्नड़ा इंग्लिश भाषिया

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनोरी।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और हम आ गए हैं आज बहुत सारे विषय लेकर, कुछ व्यंजन लेकर और कथा सुधा लेकर।
1: बिल्कुल, वैसे हम ले तो आए हैं लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि कोई भी मंजिल पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, सफलता तक पहुँचने के लिए संघर्ष बड़ा जरूरी होता है और संघर्ष की कहानी बहुत मायने रखती है। यूं ही कोई प्राप्य नहीं होता है।
2: बिल्कुल, मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन वो मेहनत भी कहते हैं ना कि संघर्ष उसमें बहुत है। मेहनत अलग चीज हुई, संघर्ष अलग है। और हर इंसान मेहनत तो करता ही है, चाहे वो छोटी से छोटा श्रम हो, परिश्रम हो, लेकिन कुछ लोग जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं तो कई सारे संघर्षों से होकर ही वो गुजरना पड़ता है। और जब भी हम बहुत सारे सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं ना तो पता लगता है कि कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा।
1: और संघर्ष जो कहा जाता है कि सोना जितना तपाया जाता है उतना ही खरा होता है, तो जितना आप संघर्ष कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतनी ही आसानी से आपको आगे चलकर जीवन यापन करना होगा, मतलब सफलता आपको मिलेगी। अब हमारे श्रोता क्या कहते हैं इस बारे में, अपने संघर्ष की कहानी वो हमें बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और कैसे उन्हें सफलता मिली, और उन्हीं नहीं उनके घर वालों को, उनके बच्चों को और उनके परिजन मित्रों को।
2: और वो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या किसी की सफलता ने उनको प्रेरित किया, उनके संघर्ष की कहानी ने उनको बहुत सारी प्रेरणा दी जिसको सुनकर वो अपने जो भी मुश्किलें आ रही थी उनसे उबर कर आगे बढ़ पाए।
1: अच्छा एक बात बताइए चंचल जी कि पिछले दिनों आपने आसमान तले कब आप यूं ही खड़ी रही और आसमान, नीला आसमान कब देखा, वो धुंधला वाला नहीं, नीला नीला आसमान जो कहा जाता आसमानी रंग, वैसा हाँ, आसमान देखा?
2: आसमान का आसमानी रंग ना आजकल बहुत सारा जो प्रदूषण है उसके आगे कहीं धुंधल का सा छा गया है, वो दिखाई ही नहीं देता। और कई बार जब हम छत पर सोया करते थे तारों की छाव में, वो तारों की छाव भी खासतौर पर महानगरों में ना तारे नजर ही नहीं आते हैं। अगर नजर आएंगे भी ना तो रात के 1-2.5 बजे के बाद में, जब थोड़ा सा पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो जाता है ना, तब आपको कहीं थोड़ा सा आसमान साफ नजर आता है।
1: महानगरों से अगर हम किसी गांव की ओर जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि आसमान बिल्कुल सामने नीचे उतर आया है और तारे झिलमिल झिलमिल तारे एकदम चमकते हुए नजर आते हैं। और महानगरों में आप पूरी अपने मुंडी को ऊपर कर दें तब भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तारे छुपे रहते हैं। तो स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, 7 सितंबर को इसे खासतौर से याद किया जाता है।
2: बिल्कुल, और आज वायु प्रदूषण के कारण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्या और बहुत सारे देशों में अर्थव्यवस्था और विकास को भी चुनौती मिल रही है।
1: तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज अपने प्रोग्राम के दौरान, और कुछ व्यंजन की बातें भी तो होंगी।
2: बिल्कुल, आज से हम शुरू कर रहे हैं, सितंबर का महीना शुरू हो रहा है और कश्मीर के जो व्यंजन है इनकी बात होगी तो दमालू भाई पंजाबी भी

0: होते हैं, लेकिन दमालू कश्मीरी भी होते हैं, तो कश्मीरी दमालू की रेसिपी की आज बात की जाएगी।
1: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और अब क्या एक गाना सुन लिया जाए?
0: पहले गीत सुन लेते हैं।

0: और स्थिर वायु की स्थिति में प्रदूषक जमीन के पास ही फंस जाते हैं, जिससे हवा और ज्यादा विषैली हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण को बढ़ाता है और वायु प्रदूषण जलवायु परिवर्तन को। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने इन्हीं मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु और नीले आकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। पहली बार ये दिवस 2020 में मनाया गया था, ये इस बार 7वां वर्ष है
1: और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वह क्लीन एयर फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्यवाही के लिए स्वच्छ वायु होना जरूरी है। इसका मतलब यही हुआ कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दो अलग चुनौतियां नहीं बल्कि दोनों का एक ही मतलब है। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, पराली जलाना, ये हमारे हवा को भी खराब करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा देते हैं।
0: जबकि हवा हम सबके लिए जरूरी है, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम याद रखें कि स्वच्छ वायु विलासिता नहीं है बल्कि हमारे भविष्य में किया गया निवेश है। और स्वच्छ वायु और नीला आकाश तभी होगा जब स्वस्थ विकास होगा। और हम सब की निजी तौर पर भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे हाथ में जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। कम से कम इर्द गिर्द पौधे लगाएं तो शायद थोड़ी बहुत शुद्ध हवा आपको मिल सकती है। फिलहाल कथा सुधा सुनते हैं।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के।
4: लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियां राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलती बतलाने के लिए मैंने मियां राहत को अपने यहां रख छोड़ा है। मियां राहत वास्तव में कवि हैं, वो नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरे में वो नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वो नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरे में न पढ़ने की कसम खा ली। और दूर की नहीं हाँकते, पर फिर भी कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी नामी शायर सब एक साथ उन पर निछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बारामदे में देखें, जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारत लेकिन दाढ़ी तोंद तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पजामा पहने हुए हो तो आप समझ लो कि यही मियां राहत हैं। वो आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बैठलाकर मुझे आपकी इत्तिला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी भी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियां राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले भी मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता ना था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने लाल पगड़ी बांधे हुए मियां राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतला

0: आते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियां राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे और मियां राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के वाले और तांगे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तांगा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियां राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भाग्य पर छोड़कर मियां राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के एक कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियां राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टेनले रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियां राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियां राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से कार तेजी से आई और अपने दाहिनी ओर मियां राहत पर चढ़ती हुई आई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम ना होगी। मियां राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर ना थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियां भागो नहीं तो जान गई। मियां राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियां राहत को लग ही तो गया और राहत ला हौल विला कुवत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियां राहत को उठाया। चोट ना आई थी, सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियां राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियां राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियां राहत से पूछा,
1: ओहो, अरे आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी?
0: मियां राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरता पूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वो भी मुस्कुराए।
2: नहीं, चोट तो ऐसी कोई लगी नहीं, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए।
0: युवती ने 5 रुपए का नोट मियां राहत को देते हुए कहा।
1: वो क्या है ना कि अभी हाल ही में मोटर चलाना सीखी है। एक मिनट, लो ये 5 रुपए, अपने बचने की खैरात बांट देना।
0: अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियां राहत ने अपना मुंह फेर लिया।
2: मैं साहब, मेरे क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं। आप लोगों पर अपनी जान न्योछावर करने में भी मैं फख्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, ये खैरात बांट दीजिएगा।
0: वो युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियां राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियां तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियां राहत बोले,
2: क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात करते हैं।
0: इतना कहकर मियां राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक और पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे ये 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियां राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब ही में ना था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियां राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियां राहत मेरे यहां प्रायः आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनकी दाद भी देता था।

0: इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियां राहत मेरे यहां ना आए थे। एक दिन शाम के वक्त बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियां राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें दबदबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियां राहत खैरियत तो है? ये तुम्हारी क्या हालत, क्या बीमार तो नहीं रहे?
1: कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा,
2: बाबू साहब, बाबू साहब।
1: इसके बाद वो लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया था। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है?
2: नहीं।
1: मियां राहत ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं?
2: हाँ।
1: राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, कुछ बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ? मियां राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया,
2: बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है ना? जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था।
1: हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं भूल सकता हूँ?
2: बाबू साहब, अब कैसे बताऊं? उस दिन वो जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वो, अरे क्या बताऊं, वो मिस साहब एक वो जो बड़ी पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी में काम करती है।
1: हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, उनका नाम सुशीला देवी है ना?
2: है? बाबू साहब, यही नाम है। आज वो गिरफ्तार हो गई।
1: तो फिर इससे क्या?
2: अब क्या बतलाऊं बाबू साहब? अरे मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाना पड़ा था।
1: मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मियां राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियां राहत ने फिर कहा,
2: बाबू साहब, ये सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोटकर कितना बड़ा गुनाह किया।
1: मैंने कहा, मियां राहत, इस सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया है, इसी के लिए तो तुम तनख्वाह पाते हो। मियां राहत चिल्ला उठे,
2: मैं नहीं चाहता ये तनख्वाह। इस गुलामी से मैं आजिज आ गया हूं।
1: मैंने देखा मियां राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियां तुम्हारी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी बच्चों का नाम सुनते ही मियां राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया।
2: क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता।
1: इस बार उन्होंने बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियां राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वो जीवन भर कभी ना भूलूंगा। मियां राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीवी रो रो कर कह रही थी,
3: अरे निगोड़ा निगोड़ा कलमुहा कहीं का, नौकरी छोड़ाया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। भूखा मारेगा हम लोग क्या खाएंगे, बच्चे कैसे रहेंगे? ले नौकरी छोड़ने का मजा, ले मजा ले।
1: मियां राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये शेर बेर बेर गा गा कर पढ़ रहे थे।
2: हाय, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हाय हाय, ये इश्क।
4: आज आपने सुना कथा सुधा में भगवती

चरण वर्मा की कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के। भाग लेने वाले कलाकार जी श्याम, जयंत पात्रिकर, नेहा देसाई और ममता सिंह। प्रस्तुति अंशी पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा सुन रहे थे श्रोता अभी, और अब गाना सुनते हैं ये।

0: सिखियां और सखा ये गाना सुन रहे थे। अब चंचल जी घड़ी की ओर देख रही हैं कि ये ब्रेक का समय हो गया है, तो लेते हैं।
1: अंतराल का समय हो गया है और अंतराल के बाद हम फिर आएंगे बातें करने।
0: छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली
1: और गीत ये कथा सुधा से पहले हमने बात की थी स्वच्छ वायु नीले आकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं यानी कि 7 सितंबर को, एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है और इसमें क्या होता है कि शरीर

0: दिवस के बारे में। आज तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, यानी कि 7 सितंबर को। एक है विश्व ड्यूशेन जागरूकता दिवस, और ये हर साल 7 सितंबर को हम मनाते हैं। ये एक पेशीय दुपोषण का अनुवांशिक दुर्लभ रोग है, और इसमें क्या होता है कि शरीर में डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, और मुख्य रूप से ये बीमारी जो है लड़कों को या पुरुषों को प्रभावित करती है, और लड़के अधिकांश 15 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य यही है कि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि जो उपचार है वो भी समय रहते किए जा सके।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर 1923 को वियना में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग बना था, जिसे आज हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इसी ऐतिहासिक याद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 में प्रस्ताव पारित किया, और 2023 से हर बरस 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
0: और ममता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, और अपराध अपनी कोई सीमा नहीं देखते, साइबर अपराध हैं, मानव तस्करी, मादक पदार्थों के अपराध हैं, आतंकवाद है, ये एक देश से शुरू होते हैं और दूसरे देश में जाकर समाप्त होते हैं। तो एक देश की पुलिस अकेले वहां कुछ नहीं कर पाती, तब ऐसे समय पे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी कि इंटरपोल की बहुत जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कह रही है, और इसीलिए पुलिस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग जरूरी भी है। इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय पुलिस संगठन मिलकर सूचना साझा करते हैं और चोरी हुए पासपोर्ट पकड़ते हैं, अपराधी तंत्र को तोड़ते भी हैं। इस वर्ष का विषय हमें एक गहरी बात भी सिखाता है, वो है विश्वास यानी भरोसा। इस वर्ष 2026 का विषय कमजोरी से सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में विश्वास और वैधता का निर्माण है।
0: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का भी ये मानना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, शरणार्थी हैं, दिव्यांगजन हैं, ये सभी लोग सबसे पहले अपराध का शिकार बनते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें न्याय भी सही से नहीं मिल पाता है। इसीलिए पुलिस व्यवस्था केवल क्षमता से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से भी बनती है।
1: बिल्कुल।
0: और एक लाइन में अगर कहें ममता जी, तो सीमा पार सहयोग तभी सुरक्षित हर योग, या फिर विश्वास ही है शक्ति, पुलिस है जन की भक्ति।
1: सही बात है, और हमें चाहिए कि हम उन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, और संकल्प लें कि हम विधि के पालन में सहयोग करेंगे। और अब एक गाना सुनते हैं, ये

0: कौन अपना कौन पराया फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में सखियां और सखा सुन रहे थे। और चंचल जी, जब हम कोशिश करते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या हार मान के बैठ जाना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर कुछ भी पाना है तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। और वैसे भी समाज में प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, तरक्की, पढ़ाई में अव्वल आना, कुछ भी होने दो, लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है तो संघर्ष के बिना तो वो संभव ही नहीं है। और ममता जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संघर्ष हमारे जीवन को तराशता है, निखारता है, संवारता है, और फिर हमें एक ऐसे सांचे में ढाल देता है कि दुनिया में हम किसी भी जगह पर एक मिसाल भी बन सकते हैं। और हम जो भी अथक प्रयास करते रहते हैं, जिसे हम संघर्ष कहते हैं ना, उसके बाद ही हमें सफलता मिलती है, और निसंदेह वो अतुलनीय भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी तरह की एक बात हमारी एक सखी कह रही है, इसी तरह की बात कि जिंदगी के बुरे दौर में मिलने वाली छोटी बड़ी असफलता से बजाय घबराने के हमें उसी में से रास्ता खोजना चाहिए। कई लोग अपनी असफलता की तरफ कुछ ज्यादा ही देखते हैं और नए सपने देखने का जोखिम उठाने से डरते हैं। दरअसल सफलता का हर तार हमारे भीतर ही जुड़ा होता है, आवश्यकता है उसे तार को सही तरीके से कसने की। उस तार को, अपने भीतर के तार को सही कसकर ही कोई एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन के संघर्ष जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव हमें कराते हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाता है, हमेशा सक्रिय रहना सिखाता है, समय की कीमत हमें पता लगती है, और इन सब चीजों से प्रेरित होकर हम सशक्तिकरण के साथ फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं और जीवन जीने के जो सही ढंग है उसको सीख पाते हैं।
0: बिल्कुल, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में सफलता की उम्मीद करता है, जिसके लिए वो परिश्रम भी करता है। कई बार कुछ अलग करने की इच्छा और प्रबल प्रेरणा से हम अपने मुकाम के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों को सामने देखकर हार मानकर अपनी सफलता से वंचित हो जाते हैं।
1: इसी तरह से एक संदेश हमें ये कह रहा है कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्ष से होकर गुजरता है। कठिनाइयां इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं, असफलताएं मुश्किलें असली ज्ञान और अनुभव सिखाती हैं। बड़ी सफलता के लिए लंबा धैर्य और निरंतर प्रयास इसकी सबसे बड़ी कुंजी है। सुडौल अक्षर को लिखने के लिए बचपन में ही स्कूलों द्वारा, हमें शिक्षकों द्वारा एक दो पेज लिखने के लिए कहा जाता था, और निरंतर अभ्यास से लिखावट में सुधार आता है, अक्षर सुंदर हो जाते हैं। इसी तरह से जिंदगी में भी सफलता के लिए ये सूत्र लागू होता है।
0: जब लिखने के लिए कहा जाता था सुलेख लिखना, तो सबसे कठिन लगता था कि अरे क्या मतलब, कठिन से मतलब कि उबाऊ लगता था, कि एक दो लाइन लिखने के बाद लगता था कि वही बात क्यों लिखवाया जा रहा है, कि भारत हमारा देश है, हमारा देश जानों प्राणों से प्यारा है, और उसी एक लाइन को बार बार लिखना, तो तब ये बात नहीं समझ में आती थी कि अगर ऐसे ही अभ्यास की आदत पड़ी रहेगी तो आगे जब कठिनाई आएंगी तो कठिनाइयों से जूझने की आदत पड़ेगी। और बहुत सारे ज्ञानी लोग भी कहते आए हैं कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। याद रखें कि अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद कभी पीछे मुड़कर ना देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
1: ये बात आपने बड़ी सही बताई, कई बार आधे रास्ते में आगे लगता है ना कि चलो भाई वापस चले, कितना दूर है, जबकि अगर हम थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ जाएं तो शायद उतनी दूरी पर।
0: यहाँ पर तैरने वाले का उदाहरण सबसे अच्छा होता है कि जो लोग तैराक होते हैं, अगर नदी पार कर रहे हैं और आधी नदी तक उनका हौसला टूटने लगे तो क्या कर सकते हैं, बीच नदी से पीछे जाएंगे तो भी उतना ही पानी है और आगे

0: जाएंगे तो भी उतना ही पानी
1: का,
0: तो इसलिए बेहतर है कि आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिश करते रहें।
1: बिल्कुल, आगे बढ़कर मनचाही सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम हम कर रहे हैं उसका अनुभव हमें मिलेगा, और बार बार हार कर अपनी हिम्मत के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, यही संघर्ष होता है।
0: और यहाँ पर बात ये बनती है कि हमें गाना सुनवा दें।

0: तो चंचल जी, हम बात कर रहे थे सफलता प्राप्ति का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है, और हमारे श्रोता भी इस मुहिम में आगे आ चुके हैं और वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि संघर्ष ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है, कभी ठोकर देकर संभलना, कभी आंसू पोंछकर मुस्कुराना। आज जो थोड़ा भी मजबूत हूँ उसमें मेरी मुश्किलों का बड़ा हाथ है। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, हमें अपने आप से मिलाने आता है। क्या बात है,
1: सही बात है ममता जी। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होगा, जीवन जीने के आनंद को, सच्ची खुशी को हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जिस तरह बिना चोट के पत्थर को भी भगवान का रूप नहीं दिया जा सकता, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मूर्ति जब गढ़ी जाती है तो कई बार उस पर चोट की जाती है, तब वो अपना आकार लेती है। और ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी संघर्ष की तपिश ना हो तो वो निकलेगा कैसे और शिखर तक पहुंचेगा कैसे, या फिर अपनी मनचाही सफलता को कैसे पाएगा।
0: बिल्कुल, और संघर्ष के सूत्र को हम समझ लें तो उस पर चलने की कोशिश हमें करनी होगी, कि मतलब अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी देर सवेर। संघर्ष के डर से जीवन में कभी अपने कदम पीछे नहीं लेने हैं। आज का संघर्ष हमारे कल को सुरक्षित करता है। ये सत्य है कि जीवन में कई बार बुनियादी सामाजिक पारिवारिक समस्या आन खड़ी होती है, तब लक्ष्य के प्रति

0: संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ भी जाता है।
1: और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुश्किलों से घबराने की बजाय उनसे सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का असली आनंद महसूस करता है। इसीलिए रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, हिम्मत ना हारें, कदम ना रोकें और अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संघर्ष जितना सिखाता है सफलता उतनी ही अच्छी लगती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि सच तो यही है, सफलता का रास्ता संघर्ष से है, लेकिन ईश्वर संघर्ष रहित जीवन भी देते हैं। किसी किसी को चांदी और सोने के चम्मच और थाली वाले घर में ही जन्म दे देते हैं, तो उनके लिए संघर्ष के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिना संघर्ष सफलता मिलना काफी मुश्किल है। जीवन में संघर्ष और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बिना संघर्ष या कठिनाइयों का सामना किए बिना जीवन में सफलता हासिल नहीं की जा सकती, मतलब बिना संघर्ष के।
1: बिल्कुल, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, हम इस बात को याद रखें। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, गीत सुन लें।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई गाना हो गया, अब खाने की बात भी जरूरी है।
1: हाँ, गाने के बाद खाना।
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं ने जो व्यंजन लिख भेजे हैं हम वही उन तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीरी दम आलू और सामान्य आलू दम के बीच मुख्य अंतर उनकी ग्रेवी सामग्री और बनने की विधि में होता है। कश्मीरी दम आलू में इसमें प्याज लहसुन और टमाटर का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी ग्रेवी मुख्य रूप से फेटे हुए दही पर आधारित होती है। सामान्य आलू दम उत्तर भारतीय या पंजाबी शैली के आलू दम में प्याज लहसुन और टमाटर की गाढ़ी ग्रेवी बनाई जाती है। इसमें काजू का पेस्ट या क्रीम भी डाली जाती है जिसमें ये अधिक मलाईदार बनता है। कश्मीरी आलू दम में सूखा हुआ अदरक, सोल्ट पाउडर और सौंफ पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है।
1: तो ये तो हुई एक संदेश की बात। अगले संदेश में इसको बनाने की पूरी रेसिपी बताई गई है और इसमें बताया गया कि कश्मीरी दम आलू बिना प्याज लहसुन के बनने वाली बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो है बेबी आकार के पोटैटो, यानी कि 500 ग्राम हमें आलू लेने छोटे छोटे आकार के, सरसों का तेल लेना है ग्रेवी के लिए और तलने के लिए, ताजा फेटा हुआ दही करीब एक कप लेना है, सौंफ पाउडर एक बड़ा चम्मच लेना है, सौंठ यानी सूखे हुए अदरक का पाउडर आधा बड़ा चम्मच लेना है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसे थोड़ी रंगत अच्छी आ जाएगी वो एक बड़ा चम्मच लेना है, दो चुटकी हमें हींग लेनी है और खड़े मसाले में हमें लेने हैं जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची, नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। अब बनाने के लिए जो आलू है उनको तैयार कर लें, उनको थोड़ा 50% तक उबाल कर और छील लिया जाता है। अब किसी कांटे से या टूथपिक से आलू में छेद कर दिए जाते हैं ताकि मसाले इनमें अंदर तक जा सके और इन आलू जो छोटे छोटे आलू हैं इनको सरसों के तेल में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेना है और थोड़ा सा इनकी जो ऊपर की लेयर है वो क्रिस्पी हो जानी चाहिए तब तक हमें इन्हें तलना है। और मसाले का एक पेस्ट बनाना है, उसके लिए एक कटोरी में फेटा हुआ दही, कश्मीरी लाल मिर्च, सोंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा पानी मिलाकर ये पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू तले थे थोड़ा सरसों का तेल गर्म छोड़ देना है, उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, हींग डाल देनी है, फिर ग्रेवी डालकर थोड़ा धीमी आंच पर उसे पका लेना है, फिर दही का पेस्ट डालना है और तब तक तेल अलग ना हो तब तक इसको पकाना है। फिर जो हमारे तले हुए आलू हैं थोड़ा सा नमक डालकर इन्हें भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर जब तक वो तेल थोड़ा सा अलग होने ना लगे तब तक पकाना है 10-15 मिनट तक। जब आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे तो आपके समझ लीजिए कि कश्मीरी दम आलू जो है वो तैयार है।
0: तो ये रेसिपी हमारे श्रोताओं ने भेजी थी और हमने पढ़कर सुनाई और अगली बार किसी और रेसिपी की बात होगी। और अब घड़ी की ओर देखिए कि अब गाना बजाने का समय है और सुनाते हैं ये।

0: आर पार फिल्म का गाना था, गीता दत्त की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम बोली बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ಸಿರಿಗಂಧ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈಂ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್. रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा. नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित. दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए. निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव. और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची. भारत का पदक पक्का. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई.
2: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई. नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी. CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे. रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे. श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है.
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से. उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ.
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की.
4: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है. ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन

0: और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
2: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
6: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
1: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

0: मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में पांचवी मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को

प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।